0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, बंदी का नाम है आरजे कनिका। इट्स टाइम फॉर द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 ओनली शो ऑन मिर्ची, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना सजेस्ट करना है, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई एंट्री है, हमारा 90s-2000s का इंडी पॉप क्लासिक है ऑल दिस एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की। गाना नंबर 10 पर इस गुरु रंधावा का गाना, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, उन्हीं की आवाज। गाने का नाम है वोग। पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे गिर के वोग इस हफ्ते ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद शुभ का नया नवेला गाना मूव्स इस हफ्ते डेब्यू मार के ऑन गाना नंबर 9। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
0: Number 10. 10, 10.

0: गुरु रंधा की आवाज में एक गाने का नाम है वोग, दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। मैं गुरु रंधावा का गाना सुनती हूँ, सुन के तो मुझे पता है इट्स अ गुरु सॉन्ग, पर अक्सर नाम नहीं याद रहता, बिकॉज मोस्टली गाने मुझे एक जैसे साउंड करते हैं। पर कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कहीं से उसका एक इंस्ट्रूमेंटल या इंट्रो म्यूजिक भी सुन लें तो पूरा गाना याद आ जाता है।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बिंदी का नाम है आरजे करेगा। इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, फॉलो करना एकदम फ्री है। मुझे पता है आप फोन ही चला रहे थे अपना, @RJKareka और इंस्टाग्राम पर आके क्विकली से हेलो। कोई गाना शेयर करना हो बिंदास आके हिट मी अप। कभी ऐसा होता है ना, दोस्तों के साथ बैठे हैं, रेडियो पे कोई गाना बस शुरू हुआ है, इंट्रो म्यूजिक प्ले हुआ है एंड आपने एकदम बता दिया कि अरे दिस इज दिस सॉन्ग, एकदम फुल ऐसे सुप्रीम फीलिंग आती है दैट आई एम बेटर देन यू ऑल, मैं ज्यादा कल्चरली रिच हूँ, मैं ज्यादा अच्छा म्यूजिक जानती हूँ तुमसे। बहुत सही फीलिंग होती है, शाबाश, पैट ऑन योर बैक। लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं कि जैसे ही वो इंट्रो म्यूजिक बजता है आपको नहीं, गाड़ी में चारों दोस्तों को गाना याद आ जाता है, बिकॉज वो गाना, वो इंट्रो म्यूजिक इतना आइकॉनिक होते हैं। पिछले हफ्ते हमने आपको एक गाने का इंट्रो म्यूजिक सुनाया था एंड आपको गेस करना था कौन से वाला गाना है। प्लेइंग इट राइट अगेन फॉर यू। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे राइट आंसर्स आएंगे, क्योंकि ये गाना एक साल पुराना भी नहीं है। गाने का नाम है अर्ज किया है बाय अनूप जैन, इट्स अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग। इस काउंटडाउन पे आगे ये गाना आने वाला है, कौन से नंबर पे उसके लिए वेट करना पड़ेगा। पर जितना पॉपुलर ये गाना हो चुका है उतना ही सिनोनिमस ये इंट्रो पीस हो गया है। @RJKareka ऑन इंस्टाग्राम पर आओ, अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ाओ, मैं एक और गाने का इंट्रो म्यूजिक आपके लिए प्ले करने वाली हूँ। ध्यान से सुनो और बताओ ये कौन सा गाना है। जल्दी जल्दी आके @RJKareka और इंस्टाग्राम पर मुझे बताओ, मेरे दिमाग में तो गाना, गाने के विजुअल्स, वीडियो सब आ गया है। शो में आगे चल के ये गाना मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। अभी काउंटडाउन पर आगे बढ़ते हैं दिलजीत दोसांझ की आवाज में, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है डीलर। पिछले हफ्ते से 4 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके दिस वीक ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडिया टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 8।

रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 98.3 98.3 मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 6

0: पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जम गया है ये गाना। गाने का नाम है ए अजनबी, आदित्य रिखारी की आवाज अलोंग विद कुटले खां एंड रैवेटोर। इट्स अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग। ए अजनबी वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले संजू राठौड़ का नया नवेला गाना, गाने का नाम है बैंगल्स, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका। दिस इज गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का रिपोर्ट कार्ड हम आपके लिए लेकर आते हैं। इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। द शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक। लेकिन म्यूजिक की बात पता है क्या होती है? इट मेक्स यू ट्रैवल इन टाइम। कोई भी धुन कभी भी हमको जिंदगी के किसी किस्से में ले जाती है। लाइफ की मेमोरीज की जो बुक लिखी हुई है हमने, उसका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 कभी भी खुल जाता है। अभी रिसेंटली एक वीकेंड पे मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं कैफे में थी, थोड़ी कॉफी पी रही थी, आई वॉज एंजॉइंग द वाइब, सेल्फी खींच रही थी, आई वॉज ट्राइंग टू बी इन द मोमेंट, एंड एक गाना चलता है उस कैफे में। वो गाना सुनते ही मैं अपनी लाइफ की मेमोरीज के चैप्टर नंबर 2019 में जा पहुंची। वो गाना मेरे को बिल्कुल ट्रांसपोर्ट करके इसी स्टूडियो में लेकर आया जहां मैंने वो गाना आपके लिए सबसे पहले प्ले किया था।
2: वास्ते जहां भी दूं मैं गवाही मां भी दूं, किस्मतों का लिखा मोड़ दूं।
0: गाने का नाम है वास्ते, ध्वनि भानुशाली, निखिल डिसूजा का गाना। एंड ऑनेस्टली मुझे लगा भी नहीं था कि मुझे एंड टू एंड इस गाने के लिरिक्स याद रहेंगे, बट आई हैड आई कॉन्टैक्ट विद एक दो लोग जो मेरे राइट वाली टेबल, लेफ्ट वाली टेबल पे बैठे थे, एंड वो भी इस गाने के साथ लिप सिंक कर रहे थे। एंड आई रियलाइज दैट सम सॉन्ग्स हैव एन इम्पैक्ट जो आप डिफाइन ही नहीं कर सकते हो। आई रिमेंबर 2019 में दिस वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट पॉप सॉन्ग्स ऑफ द ईयर। इनफैक्ट गाना इन टॉप 10 का बेस्ट ऑफ 2019 में वास्ते वॉज नंबर 1 सॉन्ग। इस गाने ने कई सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए। ये पहला ऐसा नॉन फिल्म गाना था जिसने यूट्यूब पे 1 बिलियन व्यूज क्रॉस किए। उसके बाद कई गानों के साथ ऐसा हुआ, बट आई हैव टू रिमाइंड यू दैट इस गाने ने वो इफेक्ट क्रिएट किया जो एक फिल्म का गाना करता है। जहां इट डजंट मैटर कि ये गाना कौन सी फिल्म पे है, किस पे दर्शाया है, अगर कभी आपने सुना तो मेरे जैसे उस कैफे में बैठे बैठे आप एक गाना गाना शुरू कर देते हैं। तो अपनी रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग, तनिष्क बागची की कॉम्पोजिशन, ध्वनि भानुशाली की आवाज, लेकिन इस गाने के स्टार है निखिल डिसूजा। ट्रस्ट मी, ये गाना मैंने यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम रील्स, हर जगह सुना है, पर कुछ तो बात है, ये गाना रेडियो पे कुछ ज्यादा ही खूबसूरत साउंड करता है। दिस इज वास्ते प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

What a song. तनिष्क बागची की कॉम्पोजिशन है, ध्वनि भानुशालिया निखिल डिसूजा की आवाज, अराफत महमूद के लिरिक्स हैं, राधिका राव एंड विनय सप्रू ने ये वीडियो बनाई. Everything about this song is iconic. For the real OG pop culture fans, मैं एक indie pop quiz पूछूंगी आपको. It's a difficult one. At RJ Kanega on Instagram पर आओ और मुझे बताओ इस गाने वास्ते में ध्वनि भानुशाली का ब्रेकअप होता है, ठीक है? वो ब्रेकअप कितने बजे होता है मुझे आके at RJ Kanega पर बताओ. मेरे को full confidence है आपको पता होगा. Now back to the countdown. अगले वाले गाने की बारी. The social media sensation गाने का नाम है शीशा. मिट्टा रॉर की आवाज इनकी कॉम्पोजिशन. मिट्टा रॉर स्वरा वर्मा की आवाज में शीशा इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इन द टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 5.

रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 4

0: Diljit Dosanjh, the man you are, and what a collaboration with Sia, gaane ka naam hai Ranja. Pichle hafte se ek nahi, do nahi, teen nahi, char bhi nahi bro. Pure 6 positions upar jump karkar, Ranja was this week on Gaana number 4.
1: Gaana Indie Top 10. Gaana Indie Top 10. Kanika ka saath.
0: मिर्ची सुन रहे हैं आप. दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका एंड दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक. वो कहते हैं हर गाना अपना लिस्टनर ढूंढ लेता है, पर पता नहीं कुछ गाने हमको रात को ही ज्यादा अच्छे क्यों साउंड करते हैं. लाइक रियली थिंक अबाउट इट, देयर आर सम सॉन्ग्स जो आपने दिन में 2-3 बजे सुना तो ठीक है, यू विल गिव इट लाइक अ 6/10. वही गाना 2 AM पे हिट्स राइट इन द फील्ड्स, दिल के सारे इमोशंस उमड़ जाते हैं. और ऐसा ही एक गाना मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया है, उसका नाम है जुल्फे बाय साहिल. दो बड़ी टॉर्चेस के साथ इस गाने पर हम एक स्पॉटलाइट मारना चाहते हैं, बिकॉज ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल आर्टिस्ट. साहिल ने अपनी जर्नी बहुत सारे आर्टिस्ट की तरह कवर्स गाकर ही शुरू करी थी, मैशअप्स गाई, वहीं से अपनी ऑडियंस बिल्ड करना शुरू किया. एंड धीरे धीरे जब लोग उन्हें ट्रस्ट करने लगे, उनके म्यूजिक के साथ जुड़ना शुरू करे, उन्होंने अपना ओरिजिनल म्यूजिक अपने फैंस के साथ शेयर किया. एंड फैंस ने कस के प्यार दिया, बहुत ओपन रहे उन एक्सपेरिमेंट्स के लिए, एंड दे केप्ट आस्किंग फॉर मोर न्यू सॉन्ग्स. उन्हीं में से एक गाना है जुल्फे. इट्स अ प्रॉपर लेट नाइट कन्फेशनल सॉन्ग, ऐसा मोमेंट जब आप किसी को कॉल नहीं करते हैं लेकिन उनके बारे में सोचना बंद भी नहीं कर पाते हैं. रियलिटी इमेजिनेशन के बीच का जो स्पेस है, जिसको मे बी आप ओवर थिंकिंग कहते हैं, बट उसका भी अपना मजा है. इट्स क्वाइट R&B सॉन्ग, वेरी इंटीमेट, वल्नरेबल है, दैट्स साहिल की स्पेशलिटी. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. आज की हमारी गाना स्पॉटलाइट में दिस इज जुल्फे बाय साहिल, प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इन द टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

0: साहिल की आवाज में दैट वॉज जुल्फे फॉर ऑल द लेट नाइट थिंकर्स. अगर आप थोड़ा ओवर थिंक करते हैं ये गाने को बैकग्राउंड में लगाकर करना एटलीस्ट बेटर रहेगा. एट आरजे कनिंग ऑन इंस्टाग्राम पर आके मेरे साथ अपने 2 AM वाली प्लेलिस्ट शेयर करो. आई माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. नाउ बैक टू द काउंटडाउन. अगले वाला गाना इज मेरा आपका सबका 2 AM 2 PM 3 PM 5 PM सॉन्ग. ये गाना 15 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार है अनूप जैन की आवाज में. गाने का नाम है अर्ज किया है. इट्स अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके अर्ज किया है इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इन द टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 3.

0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट।

0: गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सबको ये गाना बहुत पसंद है। 23 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप किया है करण औजला इक्की का बॉयफ्रेंड दिस वीक ऑन गाना नंबर 2।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: You are listening to Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This is the show which is all about the hottest pop music of the week. Gaana number 10 se Gaana number 2 ka safar hum pura kar chuke hain. Before we move on to the numero uno song of the week, it's time for what we call
1: Kanika's Cassette Classic.
0: हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वाज एंड द सॉन्ग वी गोइंग टू फीचर दिस वीक इज गाने का नाम है तू बाय द वन एंड ओनली सोनू निगम। सोनू निगम का नाम ही काफी है, ही इज अ फुल रेंज म्यूजिशियन। जितने पॉपुलर सोनू निगम एज अ हिंदी प्लेबैक सिंगर हैं, उतने ही पॉपुलर वो एज अ पॉप स्टार भी हैं। नाउ थिंक अबाउट इट, इंडिया में पॉप स्टार्स कब बने? मतलब गाने बहुत बड़े हो जाते थे, पर उन गानों को हम वो गाना किस मूवी में आया है या उस गाने में कौन सा एक्टर एक्ट्रेस है उससे याद रखते थे। देन केम अ वेव ऑफ आर्टिस्ट अर्ली 90s, लेट 90s में ये पॉप स्टार्स जैसे कि सोनू निगम, शान, लकी अली, जिन्होंने इंडियन इंडी पॉप म्यूजिक को आगे बढ़ाया, जिनके गानों की म्यूजिक वीडियो में कोई बड़ी फिल्मों के हीरो नहीं बल्कि आर्टिस्ट खुद फीचर होते थे, एंड सोनू निगम वाज द पोस्टर बॉय ऑफ दैट चेंज। अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाना शुरू किया उन्होंने। ऑल्दो वो बहुत बड़ी फिल्मों के लिए ऑलरेडी प्लेबैक सिंगिंग कर रहे थे, बट उन्होंने इंडिपेंडेंट पॉप म्यूजिक को भी उतना ही स्पेस एंड अटेंशन दी, एंड उस फेस का ये सबसे मस्ती भरा गाना है। The song is young, very peppy, एक flirtatious energy है, and किसी movie का scene बनने की जरूरत नहीं थी, because in its own इस गाने ने अपनी एक cinematic दुनिया बनाई। इस गाने में सोनू निगम के साथ बिपाशा बासु is the featuring actor. It was a youth favorite back then. It is till now. तो अपने radio sets की volume बढ़ा दीजिए। सोनू निगम की आवाज में the forever iconic गाने का नाम है तू। It's playing right next for you on our cassette classic this week. बंदी का नाम है कनका। Enjoy.

यार ये गाना सुनते हुए लगता है कि टोपी पहनो और उस टोपी को उल्टा कर दूं. समथिंग अबाउट दिस सॉन्ग विच जस्ट सर्व्स स्वैग. सोनू निगम की आवाज में दैट वॉज टू ऑन आवर कैसेट क्लासिक दिस वीक. एल्बम का नाम है किस्मत, म्यूजिक है बिजू का एंड लिरिक्स हैं देव कोहली के. आई कांट बिलीव अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्वैग वर्ड यूज किया बिकॉज मुझे क्रिंज होता है उस वर्ड से. सो टू मेक माई सेल्फ फॉरगिव दैट एंड फॉर यू टू फॉरगिव मी, सीधा बढ़ते हैं इस हफ्ते के न्यूमेरो उनो गाने की टूवर्ड्स. पिछले हफ्ते से अपनी पोजिशन पर बरकरार ये गाना हिस्ट्री बना रहा है. गाने का नाम है बैरन बाय दिस सुपर टैलेंटेड म्यूजिकल एक्ट कॉल्ड बंजारे. उन्हीं की आवाज, उन्हीं की लिरिक्स, उन्हीं की कॉम्पोजिशन 6 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. थर्ड टाइम इन अ रो बैरन इज ऑन गाना नंबर 1 एंड इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनका. एंजॉय. नंबर 1.

रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स हॉट।

Party people, volume full, mood on turbo. आज का सीन सिंपल है, no overthinking, only over dancing. और नाचने के बहुत सारे reasons भी है. पहला वाला reason है हमारे DJ Richard का जन्मदिन, जो कि 1 मई को आता है, मतलब लेबर उनका और happiness हमारा, जो कि हमें मिलता है क्लब मिर्ची से. Thank you so much Richard for making our weekends fantabulous. And here's your listeners, Dree, Ride Music, Shrijoy Bhattacharya, Shudipto Roy, DVJ Arv, AKD, Mahesh Chok.

0: कुछ आज ग्रूव डिसाइड करेगा. द ट्यून इज टंटनन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका. एंड आई एम श्योर विद दिस काइंड ऑफ म्यूजिक वी आर ऑल गोइंग टू गेट लकी टुनाइट.
1: Like the legend of the Phoenix.

बैक अगेन दिल में जो है बोल दे क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयो दिखा इसी बीट पे छोड़ दो यार खुद को डांस फ्लोर के नाम पे सौंप दो चुप क्यों रहे

0: Mirchi. It's hot.
1: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

रंगीला मूड हो या हार्ड ब्रेक बॉस, वी ऑल विल सर्वाइव एंड डांस. डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका विथ यू ऑन क्लब मिर्ची. दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर.

इश्क बिना भी पार्टी चलती है। क्लब मिर्ची है शो का नाम। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका आपके साथ। बस बीट्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बाकी लिरिक्स अ लॉट ऑफ टाइम्स ना तुम जानो ना हम।

लव क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। आप बोलो या ना बोलो, ग्रूव एंड बीट्स यहाँ पे बोलती है नॉन स्टॉप। एंड अगर आप सोच रहे हो कि आप ब्रेक लोगे थोड़ा, सो जाइए सजना।

वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। तुम मेरे ना हुए बट दिस प्लेलिस्ट डेफिनेटली इज, एंड फॉर दैट क्लब मिर्ची के साथ एंजॉय करेंगे नॉनस्टॉप।

बैक अगेन क्लब मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका आपके साथ। और अगर बॉडी मूव नहीं हो रही है तो वाईफाई ऑफ करके डांस ट्राई करो। रेडियो पे तो क्लब मिर्ची का प्लेलिस्ट सॉलिड है। डीजे रिचर्ड इज द किंग ऑफ मई, हिज बर्थडे वाज ऑन फर्स्ट, सो हे हैप्पी बिलेटेड बर्थडे वंस अगेन रिची।

के नशे में हर वीकेंड पे आ ही जाते हैं डीजे रिचर्ड एंड हिज प्लेलिस्ट ऑन क्लब मिर्ची। बाय द वे हैप्पी बिलेटेड बर्थडे रिची। डीजे रिचर्ड के साथ मैं भी रहती हूँ, मेरा नाम है मिर्ची ओयंतिका, आपकी लाल परी।

हर बार दिल टूटेगा और बीट ड्रॉप होगी ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोटिका। आई जस्ट माइट प्ले दर्द डिस्को नाउ फॉर यू। लेट्स गो।

0: Now, ready for this.
1: मैं और तू रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोन देगा काफी है हम और हमारे साथ क्लब मिर्ची एंजॉय कर रहा है पूरा देश इनफैक्ट इंटरनेशनल है बॉस क्लब मिर्ची जा रही है सैया जी द बेस लाइन्स टू गुड.

0: voices in my head go
1: आपके साथ ऑन क्लब मिर्ची।

0: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये ये ये ये
1: यू आर पार्टी विद ओयोंटिका एंड डीजे रिचर्ड।

0: Mirchi, it's hot.
1: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयो दिगा। लाइफ हो या डांस फ्लोर, थोड़ा कंफ्यूजन जरूरी है, और अगर करना है क्लियर आपके थॉट्स और दिखाना है प्यार हम लोगों को, आ जाइए हमारे सोशल मीडिया पे डीजे रिचर्ड ऑफिशियल, दैट्स हिम एंड ऑयो दिगा, AYNTIK, दैट्स मी ऑन इंस्टा एंड फेसबुक।

Desi Ghana, Desi Mix, only on Club Mochi.

वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयो। देखा लाइफ हो या डांस फ्लोर, थोड़ा कंफ्यूजन जरूरी है। और अगर करना है क्लियर आपके थॉट्स और दिखाना है प्यार हम लोगों को, आ जाइए हमारे सोशल मीडिया पे डीजे रिचर्ड ऑफिशियल, दैट्स हिम एंड ओयो देखा AYNTIK, दैट्स मी ऑन इंस्टा एंड

प्यार पे वारी जवा क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोन देगा फिलहाल तो शरारत लेवल हाई इनोसेंस ऑन एयरप्लेन मोड लेट्स गो वी हैव शरारत

0: बैक अगेन ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंटेगा। जुमा हो या मंडे, पार्टी डजंट डिस्क्रिमिनेट, इसीलिए तो हम क्लब मिर्ची का प्लेलिस्ट लेके आते एवरी वीकेंड। लेट्स गो।
1: Mr. Worldwide's an infinity. You know the roof on fire. We go boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle, and dance like a roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like a roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

बातें पीने बाद पर ड्राइविंग पीने के बाद एकदम नहीं. नो ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग. हैव फन विद रिस्पांसिबिलिटी. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योनिका डांस फ्लोर पे आगे बोलेंगे एक साथ बचना ए हसीनो.

0: Bring that ass back like a boom, boom, boom, boom.
1: बैलेंस्ड क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयो और हम प्यार करने वाले

आज इस मुबारक मौके पर मैं आप लोगों को मेरी और कामिनी की दास्तान सुनाना चाहता हूं, मोहब्बत की दास्तान।

You are body.

Can we talk about house music? House. City of house music.

0: It's Chicago, baby.
1: और इसी हाई नोट पे वॉल्यूम थोड़ा कम, यादें फुल लाउड लेके एग्जिट मारेंगे. लेकिन जाने से पहले साइन ऑफ ट्रैक आपके लिए Chicago, baby. We'll see you again next week. Until then, you take care of yourself. बस पॉज होनी नहीं चाहिए आपकी डांसिंग. Catch you on the next drop. Ta-ta.

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: The views expressed in the Devdutt Patnaik show are the hosts alone, not the channels.
1: The Devdutt on Radio Mirchi.
2: The Devdutt Patnaik show.
1: The Devdutt Patnaik show.
0: On Radio Mirchi, it's hot.
3: Hi everyone, aap sun rahe hain The Devdutt Patnaik show on Radio Mirchi.
1: Devdutt ka day starter.
3: तो इन द मॉर्निंग्स व्हेन यू वेक अप यू नो मूड नहीं होता है काम करने के लिए बट अगर फेस्टिवल डे होगा कोई उत्सव होगा देन वी वेक अप अर्ली बिकॉज वी आर वेरी एक्साइटेड क्योंकि घर में बहुत एक्साइटमेंट होता है नए कपड़े होते हैं खाना होता है प्लान्स होते हैं पूजा पाठ होगा कुछ तो एक्टिविटी होगी गेस्ट आएंगे हम कहीं जाएंगे जो रूटीन होता है वो टूट जाता है आई रियली लव फेस्टिवल्स especially Indian festivals because हर festival में अलग अलग प्रकार का खाना बनता है and I think that is what really excites me और नया concept होता है you know दिवाली के time हम लक्ष्मी के बारे में सोचते हैं दशहरे के time हम instruments के बारे में सोचते हैं computer की पूजा करते हैं जब होली होती है तो रंग के बारे में सोचते हैं so many different ideas keep coming so जब उत्सव होता है तो उत्सव इज अबाउट सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ और भारत उत्सवों का देश है यू नो इतने उत्सव होते हैं रोज रोज कोई ना कोई उत्सव होता है और अलग अलग जगह में अलग अलग उत्सव होते हैं उत्तर भारत में दक्षिण भारत में इतने उत्सव देवी देवताओं के उत्सव होते हैं पेड़ पौधों को लेके उत्सव होता है पशुओं को लेके उत्सव होता है पितरों को मतलब एंसेस्टर्स को लेके भी उत्सव होता है इतने उत्सव होते हैं यू नो इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड यू नो जैसे बाइबल में कहते हैं कि यू नो God created the world in 6 days. On the 7th day, He rested. इसलिए हर हफ्ता एक holiday होता है. In amongst Muslims वो Friday होगा, Jewish लोगों में वो Saturday होता है, Christians में वो Sunday होता है. लेकिन ऐसा weekly holiday का concept Indian religions में नहीं है, Buddhism, Jainism and Hinduism में. यहाँ पे उत्सव कोई भी दिन मनाया जाता है, based on either some event that happened या कोई season variation या you know basically the climate has changed. तो राजा उत्सव डिक्लेयर करता था और हॉलीडे होता था तो देयर इज नो रिदमिक हॉलीडे इट इज इररेगुलर कभी भी आ सकता है कभी भी जा सकता है एक पूरा सीजन होता है जब आप ज्यादा फेस्टिवल नहीं करते हो जिसको चातुर्मास कहते हैं रेनी सीजन का सो आई थिंक फेस्टिवल्स आर अ ग्रेट थिंग टू डिस्कस नॉट अ स्पेसिफिक उत्सव बट जनरली उत्सव का मतलब क्या है वॉट डज इट मीन वॉट इज इट सिग्निफिकेंस क्यों करते हैं हम लोग वॉट इज इट्स वैल्यू इन आर लाइव सो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज वंडरफुल थिंग्स ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची
2: द देवदत्त पटनायक शो
0: मदन उत्सव और वैलेंटाइन्स डे में क्या है सिमिलैरिटी बताएंगे देवदत्त कीप लिसनिंग

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची.
1: द देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची.
2: द देवदत्त पटनायक शो.
1: कल भी आज भी
2: ऑन रेडियो मिर्ची. इट्स हॉट.
0: आज हम उत्सवों के बारे में बात कर रहे हैं, फेस्टिवल्स के बारे में बात कर रहे हैं. आई एम श्योर यू थिंकिंग व्हाट इज योर फेवरेट फेस्टिवल, एंड फेस्टिवल्स आर देयर ऑल द टाइम. कल भी फेस्टिवल्स थे, आज भी फेस्टिवल्स हैं. पहले जमाने में भी फेस्टिवल्स होते थे, अलग अलग फेस्टिवल्स होते थे, और आज भी नए नए फेस्टिवल्स होते हैं. उनका रूप बदलता रहता है. फॉर एग्जाम्पल, पहले जमाने अगर आप कालिदास की कविताएं पढ़ें तो वहां पे मदनोत्सव होता था. मदन मतलब कामदेव, गॉड ऑफ लव, और वी यूज्ड टू सेलिब्रेट द गॉड ऑफ लव. तो मदनोत्सव होता था वसंत उत्सव में, इन स्प्रिंग टाइम. और गणिकाएं नाचती थी. ऑल द गर्ल्स वर इनवाइटेड टू द किंग्स गार्डन. राजा के जो गार्डन था वहां पे उनको बुलाया जाता था, वहां पे खाना पकता था. दे वुड सिंग एंड डांस एंड प्ले ऑन स्विंग्स, और मजा करते थे. कामदेव की पूजा करते थे कि हमारी जिंदगी में भी प्रेम आ जाए, लव आ जाए. सो इट इज अ फेस्टिवल ऑफ लव. आजकल हम मदनोत्सव को नहीं मानते हैं, लेकिन वी टॉक अबाउट वैलेंटाइंस डे. ऑफ कोर्स सम पीपल गेट वेरी एंग्री. वैलेंटाइंस डे पाश्चात्य है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर. एंड आई कीप सेइंग, अरे ये मॉडर्न वर्जन ऑफ मदनोत्सव ही है, कामदेव की पूजा है. यू नो, होली इज ऑल्सो सेट टू बी रिलेटेड टू मदनोत्सव, वसंतोत्सव. अगर आप जितने भी ओल्ड काव्य पढ़े, संस्कृत काव्य, वहां पे मदनोत्सव के बारे में बहुत बताया गया है. फेस्टिवल ऑफ लव. वी सेलिब्रेट लव. वी शुड ऑलवेज सेलिब्रेट लव. कल भी आज भी. आई थिंक एवरी डे शुड बी मदनोत्सव, नॉट जस्ट ऑन सम डेज. सो एवरी डे वी शुड सेलिब्रेट लव एंड वी शुड हैव अ गुड टाइम. बट इफ यू कांट, एटलीस्ट वंस इन अ ईयर सेलिब्रेट लव. थिंक अबाउट द पर्सन हु लव्स यू एंड होप दैट यू आर लव्ड इक्वली. ऐसी ही बातें हम डिस्कस करेंगे ऑन द देवदत्त पटनायक शो, जहां पे हम वेद पुराण आख्यानों के बारे में डिस्कस करते हैं और उनका रेलेवेंस इन आवर डे टू डे लाइफ ढूंढते हैं.
1: द देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची.
2: द देवदत्त पटनायक शो.
3: राम कृष्ण के जन्मदिन तो मनाए जाते हैं, पर शिव का क्यों नहीं, बताएंगे देवदत्त. कीप लिसनिंग.

श्री वेंकटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये रेखामयध्वज सुदाकलशात पद्र वज्रांबुशांबुरुहकल्पक शंख चक्रैः भव्यैरलंकृत तलौ परतत्त्व चिह्नैः श्री वेंकटेश चरणौ।

वेंकटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये सत्वोत्तरै सतत सेव्य पदाम्बुजेन संसार तारक दयार्द्र दृगञ्चलेन सौम्योपयन्त्र मुनिना मम दर्शितौ ते श्री वेंकटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये सत्वोत्तरै सतत सेव्य पदाम्बुजेन संसार तारक दयार्द्र दृगञ्चलेन सौम्योपयन्त्र मुनिना मम दर्शितौ ते श्री वेंकटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये।

0: तो आज हम उत्सवों के बारे में बात कर रहे हैं ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची। हर देवी देवता का एक उत्सव होता है और उत्सव के साथ कोई ना कोई कहानी जुड़ी होती है। सो स्टोरीज आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन उत्सव। जैसे जब क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं लोग, तो हम कहते हैं कि जीसस का जन्म हुआ था, सो दैट इज व्हाई क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड। जब ईस्टर की बात होती है तो लोग कहते हैं कि जीसस रेजरेक्टेड हिमसेल्फ। यू नो, रमजान इज अ फेस्टिविटी व्हेन पीपल आर टॉकिंग अबाउट व्हेन द कुरान वाज बीइंग नरेटेड सो फॉर द फर्स्ट टाइम, और वो मंथ को रमजान कहते हैं। सो देयर इज ऑलवेज अ स्टोरी, समहाउ स्टोरी इज रिलेटेड टू ए फेस्टिवल। कृष्ण जन्म की एक उत्सव होती है, राम जन्म का एक उत्सव होता है, लेकिन आपने नोटिस किया होगा शिव का जन्म के बारे में कोई फेस्टिवल नहीं होता या दुर्गा देवी के जन्म के बारे में, बिकॉज ये स्वयंभू है, ये अनंत है, दे ऑलवेज प्रेजेंट। उनका कभी जन्म नहीं हुआ है, उनका मरण नहीं हुआ है, दे वर नेवर बॉर्न, दे नेवर डाई, वो अमर हैं, दे आर ऑलवेज देयर। तो वी विल नेवर टॉक अबाउट शिवा बींग बॉर्न, वी विल नेवर टॉक अबाउट देवी बींग बॉर्न और विष्णु बींग बॉर्न, बट वी विल टॉक अबाउट राम का जन्म के बारे में, कृष्ण के जन्म के बारे में। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया कि देखो कैसे कहानियों के माध्यम से एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट भी बताया जाता है। ऑफकोर्स शिव की पूजा होती है, शिवरात्रि होता है, शिवरात्रि फेस्टिवल होता है, तो ये फेस्टिवल किसके लिए होता है? कहते हैं कि उस दिन शिव जी की शादी हुई थी, दैट इज वाई शिवरात्रि को सेलिब्रेट करते हैं। सो इट इज रिलेटेड टू हिज मैरिज, नॉट टू हिज बर्थ और एनीथिंग। सो अलग अलग स्टोरीज होते हैं। जब हम उत्सवों के बारे में बात करते हैं, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस स्टोरीज विद आवर चिल्ड्रन, विद आवर फ्रेंड्स, कि आज ये फेस्टिवल क्यों मनाया जा रहा है। ऑफ कोर्स फेस्टिवल्स आर नॉट ऑलवेज रिलीजियस, देयर कैन बी आल्सो सेक्युलर फेस्टिवल्स। जैसे हार्वेस्ट टाइम में जब हार्वेस्ट होता है, तो जैसे लोहड़ी होती है, मकर संक्रांति होता है, दीज आर नॉट रियली रिलीजियस फेस्टिवल्स, दीज आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल साइकिल्स, क्रॉप साइकिल्स, हार्वेस्ट टाइम, सोइंग द सीड। तो लोग फेस्टिवल्स मनाते थे। जब टैक्स कलेक्शन खत्म हो जाता है तो एक फेस्टिवल मनाया जाता है। सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेस्टिवल्स, नॉट एवरीथिंग इज रिलीजियस। जैसे हमारे इंडिपेंडेंस डे होता है, रिपब्लिक डे होता है, देयर आर रिलीजियस फेस्टिवल्स, दीज आर पॉलिटिकल फेस्टिवल्स, नेशनल फेस्टिवल्स रिलेटेड टू सेक्युलर आइडियाज लाइक नेशन स्टेट। बर्थडेज आर ऑल्सो नॉट रिलीजियस फेस्टिवल, बट दे आर फेस्टिवल्स। सो ऑन द बर्थडे यू आर सेलिब्रेटेड बाई योर फ्रेंड्स, सो दैट इज ऑल्सो ए उत्सव। ऐसे ही बातें अबाउट फेस्टिवल्स एंड रिचुअल्स एंड सिंबल्स एंड प्रैक्टिसेस हम डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची।
1: द देवदत्त पटनायक शो। आज फेस्टिवल्स में बाजार हैं या बाजार में फेस्टिवल्स, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची, जहाँ पे हम फेस्टिवल के ऊपर बात कर रहे हैं।
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची,
2: द देवदत्त पटनायक शो,
1: कॉलिंग देवदत्त
2: ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: नाउ इज द टाइम फॉर क्वेश्चंस, सो कॉल इन, आई एम वेटिंग।
3: हाय देवदत्त, मैं हितेश बोल रहा हूँ। मुझे ये जानना था कि फेस्टिवल्स पर मार्केट ज्यादा हावी होता जा रहा है, ओरिजिनल स्टोरीज तो जैसे गायब ही हो गई है, इस पर आपका क्या कहना है?
0: थैंक यू हितेश, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फेस्टिवल्स की शुरुआत हमेशा अध्यात्म से शुरू होता है या एग्रीकल्चरल फेस्टिवल से शुरू होता है, कोई इवेंट से शुरू होता है, धीरे धीरे धीरे बाजार उसमें आ जाता है, मार्केट बिकम्स इम्पोर्टेंट, बिकॉज ज्यादातर क्या खाना मिलेगा, क्या गिफ्ट्स मिलेंगे, क्या पार्टी करेंगे, ये फोकस हो जाता है। ऑल फेस्टिवल्स हैव एन इकोनॉमिक बेसिस, सो फेस्टिवल का पर्पस इज टू स्पेंड मनी एंड क्रिएट एक्सचेंज। आप देखेंगे जहाँ पे तीर्थ यात्रा होता है वहाँ पे मेले भी होते हैं। तीर्थ यात्रा, बाजार और मेला का बहुत क्लोज संबंध है। तो पूजा पाठ के साथ बाजार हमेशा साथ में रहेगा। मंदिरों के बाहर बाजार होता है, चर्च के बाहर बाजार होता है, लोग जब मस्जिद जाते हैं तो बगल में आप देखेंगे फूड स्टॉल्स होंगे, क्योंकि फैमिली जाती है वहां पे। सो इट इज एन इकोनॉमिक स्पेस, सो वी शुड नॉट रिजेंट इट, ये होता है, इट्स ओके। अभी देखिए ना, जैसे क्रिसमस में ज्यादातर लोग जीसस क्राइस्ट की बात नहीं करते, सेंटा क्लॉज के बारे में ज्यादा बात करते हैं। सेंटा क्लॉज तो कंप्लीटली कमर्शियल है, उसके आध्यात्म ईसाई धर्म के साथ कोई लेना देना है ही नहीं। गिफ्ट्स के बारे में ज्यादा बात करते हैं हम लोग, थैंक्स गिविंग डे के बारे में हम ज्यादातर, टर्की के बारे में लोग बात करते हैं, अमेरिका में लोग नहीं बात करते कि वो थैंक्स गिविंग है क्या, क्या इतिहास था। सो दिस इज एवरीवेयर, दिस इज अ यूनिवर्सल फिनोमेना। और ऑफकोर्स आजकल जिसको हम कैपिटलिज्म कहते हैं, इज बिकम सो पावरफुल एंड मनी इज बिकम सो पावरफुल दैट वी हैव स्टॉप्ड थिंकिंग बियॉन्ड मनी। वी हैव स्टॉप थिंकिंग, शादी भी संस्कार नहीं रहे, अभी तो थिएटर बन गया है, नाच गाने का थिएटर बन गया है, वेयर हस्बैंड वाइफ इंस्टेड ऑफ गेटिंग मैरिड आर फोकसिंग ऑन डांसिंग इन फ्रंट ऑफ गेस्ट्स। होता है, समय के साथ सब कुछ बदलता है, वी आर इन अ डिफरेंट टाइम, मे बी वी हैव अ लॉट ऑफ मनी राइट नाउ, बट धीरे धीरे धीरे करके जब लाइफ का इंपॉर्टेंस समझ में आता है, जब हम अर्थ ढूंढने लगते हैं अपने जीवन में, तो हम सेलिब्रेशंस को छोड़ के उनके पीछे रहस्य जो है उसे ढूंढते हैं। यू कैन टेल योर फ्रेंड्स अबाउट दिस एंड शेयर द आइडियाज अबाउट फेस्टिवल जो हम देवदत्त पटनायक शो में डिस्कस करते रहते हैं ऑन मिर्ची, एंड एनकरेज देम टू लिसन टू द शो, सो दे विल रियलाइज कि एवरीथिंग इज नॉट अबाउट सेलिब्रेशंस, इट इज ऑल्सो अबाउट थिंकिंग, विचार, भाव, रस, बहुत चीज होते हैं फेस्टिवल्स में, नॉट जस्ट मनी।
3: इट वॉज रियली हेल्पफुल सर, थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू हितेश।
1: On Radio Mirchi,
2: The Devdutt Patnaik Show.
4: क्यों बदलती हैं फेस्टिवल्स की डेट्स? क्या है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष? बताएंगे देवदत्त। Keep listening.

त्रिपुरपतिं भज विश्वनाथं भूताधिपं भुजगभूषण भूषितांगं व्याघ्राजिनांबरधरं जटिलं त्रिनेत्रं पाशांकुशाभयवरप्रदशूलबाणिं वाराणसीपुरपतिं।

ज्योतिं भज विश्वनाथम्। आशां विहाय परिहृत्य परस्य निन्दाम् उपेरतिं च सुनिवार्य मनः समाधौ। आदाय हृत्कमलमध्यगतं प्रवेशं वाराणसी पुरपतिं

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची,
1: जहां पे आज हम उत्सवों के बारे में बात कर रहे हैं, फेस्टिवल्स के बारे में बात कर रहे हैं, फन फ्रॉलिक फ्रॉम अ कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू।
2: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची,
3: द देवदत्त पटनायक शो,
2: द देवदत्त पटनायक शो
3: ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
1: तो ज्यादातर अगर आप मंदिर में जाएं तो मंदिरों में रोज एक ना एक फेस्टिवल होता है। बनारस में एक फेमस कहावत है कि 7 दिन में 9 त्योहार होते हैं। सो यू नो वी हैव दिस विच इज द कल्चर ऑफ फेस्टिवल्स। सो मोस्ट फेस्टिवल्स हैपन ऑन द वैक्सिंग मून टाइम। वेरी फ्यू फेस्टिवल टेक प्लेस इन द कृष्ण पक्ष और द वेनिंग मून, जब द मून इज बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, अमावास की तरफ जाते हैं। सम ऑफ दोस फेस्टिवल्स आर जैसे कृष्ण जन्म, कृष्ण जन्म का फेस्टिवल इज इन कृष्ण पक्ष, महाशिवरात्रि इज इन कृष्ण पक्ष, और इनफैक्ट हर महीने एक शिवरात्रि होता है, जस्ट बिफोर अमावास के दिन शिवरात्रि होता है। महाशिवरात्रि इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शिवरात्रि, लेकिन हर महीने एक शिवरात्रि होता है। ट्रेडिशनली शुक्ल पक्ष को ज्यादा वैल्यू दिया गया था और कृष्ण पक्ष को कम वैल्यू दिया जाता है। और वन ऑफ द स्टोरीज इज दैट देवासुर में जब संग्राम हुआ था तो ब्रह्मा ने कहा कि जो शुक्ल पक्ष होगा वो देवताओं के साथ जुड़ा होगा और जो कृष्ण पक्ष होगा वो असुरों के साथ जुड़ा होगा। जब उत्तरायण होता है तो वी मूव फ्रॉम स्प्रिंग टू समर टूवर्ड्स रेन्स, दक्षिणायण में वी मूव फ्रॉम द रेनी सीजन टूवर्ड्स विंटर टूवर्ड्स स्प्रिंग। तो वहां पे भी डिविजन हो गया था कि देवता उत्तरायण में बैठते हैं और असुर दक्षिणायण में बैठते हैं। ऐसे द वर्ल्ड इज बीइंग चर्न्ड, एक मंथन हो रहा है। सो फेस्टिवल्स आर ऑल्सो रिलेटेड ऑलवेज विथ एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स associated with astronomy, मतलब तिथि, phases of the moon, seasons, उत्तरायण दक्षिणायण, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, तारे कहाँ पे हैं, जैसे कुंभ मेला will be associated with the Aquarius constellation, तो stars, planets, seasons, moon, movement of the sun, all of this play a very important role in festivals. इसलिए festivals के date बदलते रहते हैं lunar calendar के हिसाब से। solar calendar के कुछ festivals होते हैं जैसे मकर संक्रांति, वो हमेशा every year January 14th को ही आएगा because it's a solar festival, लेकिन दिवाली दिन will keep shifting because it is a lunar festival. So whenever you discuss festivals, remember to look at the calendar. It is a great way to explain to children calendar, अपने दोस्तों के साथ कि नेचर में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग टू द सन, व्हाट इज हैपनिंग टू द मून, व्हाट इज हैपनिंग टू द स्टार्स। आर फेस्टिवल्स टीच अस अबाउट एस्ट्रोनॉमी। तो अगर स्कूल में नहीं पढ़े हो तो एटलीस्ट फेस्टिवल के टाइम पे तो सीखो। एंड दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू मस्ट grab from the Devdutt Patnaik show on Mirchi, share it with your friends, show off with your friends and encourage them to listen to the Devdutt Patnaik show on Mirchi.
2: Devdutt on Radio Mirchi,
3: the Devdutt Patnaik show.
4: Kiski hai Diwali, Ram ki, Krishna ki ya Lakshmi ki, kyun hai controversy, batayenge Devdutt, keep listening.

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची। आज हम उत्सवों के बारे में बात कर रहे हैं। भारत उत्सवों का देश है। वी सेलिब्रेट ऑल द फेस्टिवल्स, वेदर इट इज हिंदू फेस्टिवल्स, बुद्धिस्ट फेस्टिवल, जैन फेस्टिवल, क्रिश्चियन फेस्टिवल, सिख फेस्टिवल्स, मुस्लिम फेस्टिवल्स, सेक्युलर फेस्टिवल्स, एथियस्ट फेस्टिवल, जो भी फेस्टिवल, हमको बहाना चाहिए फॉर पार्टिंग। और फेस्टिवल्स हमारा सांस्कृतिक पार्टी होता है। बट यू नो nowadays of course सबको कॉन्ट्रोवर्सी पसंद है, सो नाउ देर आर कॉन्ट्रोवर्सीज अबाउट ये फेस्टिवल किसके लिए मनाया जाता है। सो आई ऑलवेज गेट दिस क्वेश्चन। दिवाली के टाइम में एक स्टोरी है। अगर आप बोले दिवाली हम क्यों मनाते हैं, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है, तो लोग कहेंगे कि लक्ष्मी के लिए हम मनाते हैं दिवाली, क्योंकि लक्ष्मी का आगमन होता है दिवाली के दिन पे, एंड लक्ष्मी आ रही है इसलिए हम दीप जलाते हैं ताकि वो हमारे घर आए। लिए लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये राम जी ने अयोध्या आए थे इसलिए हम दिवाली मनाते हैं। दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ राम, इट हैज नथिंग टू डू विद लक्ष्मी, और क्योंकि राम आ रहे हैं उनके साथ लक्ष्मी आ रही है। तो राम भक्त लोगों के वो बोलेंगे अलग आइडिया, जो लक्ष्मी भक्त हैं, जो वणिक समाज है, द ट्रेडर्स विल से नहीं नहीं लक्ष्मी की पूजा है। और एक ग्रुप आ जाता है श्री कृष्ण वाले, बोलेंगे कि नहीं नहीं, यहाँ नरक चतुर्दशी होता है तो नरकासुर को श्री कृष्ण ने वध किया था इसलिए हम दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो सच क्या है बताइए। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं बलि प्रतिपाद होता है, मतलब यहाँ पे ऑन दिस डे वामन ने बाली को जमीन पाताल लोक में भेज दिया था, तो मे बी दैट इज द रियल स्टोरी। तो इतने स्टोरीज में भी मेरा ये विश्वास है कि दिवाली फेस्टिवल सबको इतना पसंद है तो अपने फेवरेट गॉड की स्टोरी उन्होंने थोप दी, एंड वी ऑल बिलीव इट। हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? जितने स्टोरीज उतना मजा। व्हाई डू वी वांट एक ही स्टोरी होना चाहिए? हमारा देश, वी आर अ डाइवर्स कंट्री, विभिन्नवाद वाला देश है। तो जिसे राम की स्टोरी सुनना है उन्हें राम की स्टोरी सुनने दीजिए, जिनको कृष्ण की स्टोरी सुनना है उन्हें कृष्ण की स्टोरी सुनना है, जिनको विष्णु की स्टोरी सुनना है वो विष्णु के बारे में सुनेंगे, जिसको लक्ष्मी के बारे में सुनना है वो लक्ष्मी के बारे में सुनेंगे। भाई बहन कहेंगे कि नहीं भाई दूज, दिवाली इज ओनली अबाउट भाई दूज। सो यू नो देयर आर सो मेनी वेज ऑफ लुकिंग एट अ फेस्टिवल, एंड आई थिंक वी शुड स्टे अवे फ्रॉम कॉन्ट्रोवर्सीज, वी शुड एंजॉय द स्टोरीज, फोकस ऑन द पॉजिटिव, स्टे अवे फ्रॉम दीज नेगेटिव। फेस्टिवल इज अबाउट पॉजिटिव एनर्जी, मंगल्य, घर में शुभ आना चाहिए, लाभ आना चाहिए। दीज आर द आइडियाज दैट वी विल डिस्कस ऑन द देवदत्त पटनायक शो। वी कीप टेलिंग यू स्टोरीज हमारे संस्कृति के बारे में, सो दैट यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर कल्चर, सो दैट यू कैन शो ऑफ विद योर फ्रेंड्स अबाउट हाउ मच यू नो अबाउट इंडियन कल्चर। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, पिक अप द फोन एंड आस्क। मैं आपके क्वेश्चंस के लिए वेट कर रहा हूं, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर। सो आई एम वेटिंग।
1: ऑन रेडियो मिर्ची,
2: द देवदत्त पटनायक शो।
3: दिवाली पर पटाखे जलाना सही या गलत, बताएंगे देवदत्त। Keep listening.

0: आज हम हनुमान के बारे में बात कर रहे हैं ऑन द देवदत्त पटनायक शो।
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो
1: कॉलिंग देवदत्त
2: ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।
0: जब जिज्ञासा होती है तो प्रश्न आते हैं और प्रश्न से ही अच्छे उत्तर मिलेंगे। सो प्लीज आस्क मी क्वेश्चंस ऑन हनुमान। पिक अप द फोन राइट नाउ एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल।
3: हेलो
0: देवदत्त हियर।
3: हेलो देवदत्त सर।
0: Hi,
3: मेरा नाम भास्कर है एंड आई एम ह्यूज फैन ऑफ योर्स।
0: थैंक यू सो मच।
3: और मेरा एक क्वेश्चन था
0: जी
3: हनुमान को लेके।
0: तो
3: हनुमान जी की जाति को लेके कंट्रोवर्सी हुई है, क्या रामायण में हनुमान की जाति की बात कहीं पे की गई है?
0: देखिए, जो शास्त्री होते हैं, जो पंडित होते हैं, इनसे दूर रहते हैं, तो ये राजनीति की बात है एंड यू नो वी शुड नॉट टेक दिस सो सीरियसली। हमारे जो शास्त्र है वो आत्मज्ञान के बारे में बात करते हैं और जहाँ आत्मज्ञान होता है वहाँ ऊंचा नीचा की बात नहीं होती। हनुमान जी इज वानर और वो महाबली हैं एंड ही इज, उनके जात से कोई संबंध नहीं है एंड वी शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ दीज पॉलिटिकल गेम्स दैट आर बीइंग प्लेड। आई पर्सनली कीप अवे। जितने भी शास्त्र मैंने पढ़े हैं, मैंने एक चीज सीखा है, जहाँ आत्मज्ञान होता है वहाँ जात पात की बातें नहीं होती। जहाँ आत्मज्ञान नहीं होता, जहाँ अहंकार होता है, वहाँ जात पात शुद्ध अशुद्ध की बातें होती हैं। तो हमारे शो में हम ज़्यादातर आत्मज्ञान की बातें करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी, मॉडर्न सोसाइटी, इक्वालिटी एंड जस्टिस, वी डोंट वांट टू डिस्कस दिस जाति। सो यू शुड नॉट बॉदर अबाउट दिस। ये पॉलिटिक्स होने दो ना शास्त्रों में। या सो दैट्स, आई थिंक वी शुड जस्ट बी मोर मॉडर्न 21st सेंचुरी इंडियंस एंड दैट्स माई सजेशन। बेस्ट ऑफ लक।
3: थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।
0: वेलकम। तो हनुमान विद्वान है, बलवान है, और जो विद्वान है उसके पास आत्मज्ञान होता है, जिसके पास आत्मज्ञान होता है वो जात पात में विश्वास नहीं करता।
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो। क्यों जुड़े हैं हनुमान शिव विष्णु और देवी के साथ, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो, जहाँ पे हम हनुमान जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यार, हनुमान जी के बारे में कितना बताना है आपको, लेकिन क्या करें, समय किसी के लिए रुकता नहीं है। शो अभी खत्म होने वाला है, और एक बात मुझे हनुमान जी के साथ बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि हनुमान जी एक ही भगवान है, एक ही देवता है, जो शिव जी के साथ जुड़े हुए हैं, विष्णु जी के साथ जुड़े हुए हैं, और देवी के साथ जुड़े हुए हैं। अब शिव के मंदिर में जाओ तो हनुमान जी की मूर्ति कहीं मिल जाएगी, कहते हैं कि वो शिव जी के अंश हैं। अब विष्णु के मंदिर जाओ तो रामदास हैं, वो कृष्ण के साथ भी जुड़े हुए हैं। और अगर देवी मंदिर में जाओ, शेरावाली के मंदिर में जाओ, तो द्वारपाल के रूप में वहां पे खड़े होते हैं ध्वजा पकड़ के। तो दिस इज अ गॉड हु इज वेरी पॉपुलर, बहुत पॉपुलर है उनके सिंप्लिसिटी की वजह से। वो विद्वान है, वो बलवान है, बट इज ऑल्सो अहंकार बिल्कुल नहीं है उनमें, बहुत ही शांति से काम करते हैं। और हाँ, इस शो के बारे में अगर आपका कोई फीडबैक है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो टाइप कीजिए #devdattonmirchi devdattonmirchi और भेज दीजिए 9033 मिर्ची पर, या आप अपना फीडबैक इस नंबर पे भी शेयर कर सकते हैं 9033647244। मैं देवदत्त पटनायक मिलता रहूंगा आपसे मंडे टू संडे हर सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। थैंक यू।
1: Devdutt on Radio Mirchi.
2: The Devdutt Patnaik Show.
3: The views expressed in the Devdutt Patnaik Show are the hosts alone, not the channels. Ali.

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: हर हफ्ते मैं यहां आता हूं 20 गाने आप और ये काउंटडाउन। लेकिन आज एक बात कहनी है पहले। बॉलीवुड में बहुत शोर है, बहुत चमक, बहुत पीआर, बहुत नॉइज, और उस शोर में कुछ गाने होते हैं जो सच में फील किए गए हैं, लिखे गए हैं, जिए गए हैं। वो गाने अलग सुनाई देते हैं हमेशा। आज का शो उन गानों के बारे में है, उन लोगों के बारे में है जिन्होंने शॉर्टकट्स नहीं लिए, जिन्होंने शोर नहीं मचाया, बस काम किया और वो काम आप तक पहुंचा इस काउंटडाउन के जरिए, मेरे जरिए। हाय, आई एम सुरेन सुंदरम एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का सबसे डेफिनेटिव हिंदी म्यूजिक काउंटडाउन। और मैं आपको वो सब सुनाऊंगा जो डिजर्व करता है सुना जाना, नंबर 20 से नंबर 1 तक। तो शुरू करते हैं विद गाना नंबर 20, रणवीर सिंह, धुरंधर, इश्क जलाकर।
3: नंबर 20।

और फिर नंबर 19 पर एक डेब्यू सॉन्ग आदित्य रिखारी और साथ में है श्रेया घोषाल जो 2026 में बिल्कुल एक जेंजी सिंगर की तरह सुनाई दे रही हैं। दिस वन इज कॉल्ड दिल वाले चोर फ्रॉम पति पत्नी और वो दो। क्लियरली चीटिंग इज कूल। नंबर 19।

0: ये था क्या कमाल है नंबर 18 इस हफ्ते। एआर रहमान का म्यूजिक, इरशाद कामिल के अल्फाज और दिलजीत की आवाज। और इन गानों के बावजूद लोग कहते हैं नहीं यार, पुराने गाने ही अच्छे होते थे। मैं हूं सुरेन और आज मैं उस डिबेट को सीधा खत्म करना चाहता हूं। इरशाद कामिल, जिनसे ये बात मैंने खुद पूछी, उनका जवाब सुनिए।
1: Actually, I don't miss anything in today's song. क्योंकि हम पिछले पुराने गाने ना भाई साहब सिर्फ 200 सुन रहे हैं, आपको पता है, और पिछले 100 साल से हम फिल्में बना रहे हैं। आलमारा हमारी पहली पिक्चर थी जिसमें गाने थे, और अब तक हम पिक्चरें बना रहे हैं और रेडियो पे सिर्फ 200-250 गाने चलते हैं पुराने, वही बार बार जो हिट हो गए हैं, और उसके अलावा वो सब आप नहीं सुनते हैं जो आप तक पहुँचा ही नहीं है या आप अप्रोच नहीं कर रहे हैं। आज के जमाने में भी आप आज के टाइम को थोड़ा सा वक्त दीजिए, 10-15 साल दीजिए, आप फिर यही बात दोहराएंगे कि पीछे वाले जो गाने थे वो बहुत अच्छे होते थे, आज से 20 साल पहले जो गाने लिखे जा रहे थे। So I don't think I don't miss anything।
0: इरशाद भाई ने जो कहा वो सिर्फ सच नहीं है, वो अनकंफर्टेबल सच है। हम 250 गाने सुनते हैं लेकिन बाकी के 50,000 का क्या, वो दब गए, दे वर फॉरगॉटन। इसलिए पुराना जमाना परफेक्ट लगता है क्योंकि उसके बेकार गाने इतिहास ने ऑलरेडी डिलीट कर दिए। आज का म्यूजिक वीक नहीं है, आज का म्यूजिक बहुत ज्यादा है, एंड उसमें से भी एक चन्ना मेरेया है, एक सैयारा है, और ये वाला गाना भी है, क्या कमाल है। ये गाने अगर 1975 में आते तो आज हम इन्हें क्लासिक सॉन्ग्स कहते। मेरे लिए आज का पिक ऑफ द वीक भी इरशाद कामिल का ही है। रहमान साहब का म्यूजिक, इरशाद भाई ने क्या कमाल लिखा है, एक गाना जो ऑलरेडी क्लासिक बन चुका है, संग बाय मोहित चौहान। दिस इज तुम हो फ्रॉम रॉकस्टार। पिक ऑफ द वीक।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 Mirchi. It's hot. Sureen ke saath only on Mirchi. It's hot. Number 17.

जाइए सजना बाय जैस्मिन सैंडलर्स, मैन शी इज अनरेप्लिकेबल, वो सिर्फ वो है। लेकिन आज मैं आपके साथ एक अलग बात करना चाहता हूँ, म्यूजिक के बारे में, पर्सनल म्यूजिक के बारे में। जब भी आप कोई गाना सुनते हैं, एक मोमेंट आता है उस गाने में, एक छोटा सा मोमेंट जो सडनली आपका हो जाता है। देखो सबका अलग होता है और वही तो मैजिक है। जैसे दीवानियत को ही ले लो, दुनिया उस कोरस पर दीवानी है, वो मल्टी वॉइस बिल्ड, वो सब जानते हैं, सब गाते हैं, लेकिन मेरे लिए वो गाना शुरू होते ही खत्म हो जाता है, पहले पल में, पहली आवाज में। जो

ये यही विशाल की ये सॉफ्ट ऑलमोस्ट हेजिटेंट आवाज जैसे किसी दर्द को संभाल के रखा हो, वहां नहीं जाता जहां सब जाते हैं, सीधा अंदर पहुंचता है। और तब मुझे समझा कि गानों में सबका दरवाजा अलग होता है। ठीक चन्ना मेरे यार, अब ये तो एक अलग ही चैप्टर है। अरिजीत सिंह का वो हुक, इट्स अ क्लासिक, इट्स इमॉर्टल, सब जानते हैं। लेकिन जब वो गाना खत्म होने लगता है, जब बाकी सब ऑलरेडी आगे बढ़ चुके होते हैं, मैं वहां रुक जाता हूँ।

ये रिपीट, ये बार बार कहना, जैसे कोई जाने से पहले एक बार और मुड़ के देख रहा हो। और फिर कुछ दिन पहले एक नया गाना आया और उसने वही किया जो विशाल की आवाज ने किया था, जो अरिजीत के उस आउट्रो ने किया था। एक स्पेसिफिक मोमेंट, एक स्पेसिफिक फीलिंग ऐसी जो मुझे लगा कि यार मैं तो यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, इस दर्द को मैं पहले भी महसूस कर चुका हूँ।

ये वाला हिस्सा, बस ये वाला जो सडनली एक टाइम मशीन बन जाती है। और आज ये गाना पहली बार इस काउंटडाउन पे आ रहा है, नंबर 15 पे, फ्रॉम चांद मेरा दिल, दिस इज एतबार। सुनिए, पूरा सुनिए और ढूंढिए वो एक हिस्सा जो सिर्फ आपका होगा। नंबर

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: नंबर 12।

0: धुरंधर रॉकिंग द काउंटडाउन दिस वीक ऑन नंबर 14 एंड रणवीर के साथ यू गॉट सारा अर्जुन, एक बहुत ही प्रॉमिसिंग नाम, लेकिन उससे भी ज्यादा एक प्रॉमिसिंग एक्टर। और इस नाम ने मुझे याद दिलाई एक और सारा की, सारा अली खान। 2018 केदारनाथ, सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक डेब्यू हुआ जिसे पूरी इंडस्ट्री ने नोटिस किया, मैंने भी उन्हें नोटिस किया, और उस फिल्म के बाद आई जेन्युइनली बिकेम अ फैन ऑफ सारा अली खान। लेकिन 2026 में पिक्चर क्या है? देयर इज अनन्या पांडे, सोलो फिल्म्स, बड़े बैनर्स, देयर इज जानवी कपूर, सोलो फिल्म्स, बड़े बैनर्स, एंड देन देयर इज सारा अली खान। पति पत्नी और वो दो में शी इज वन ऑफ द टू अफेयर्स। तीन लड़कियां, एक ही दरवाजा, तीन अलग अलग मंजिलें। और इस हफ्ते नंबर 13 पे एक गाना है कॉल्ड आवारा अंगारा फ्रॉम तेरे इश्क में, कृति सैनन का ये गाना है, जो इस जेनरेशन की सबसे कमिटेड एक्ट्रेसेस में से एक है। ये सब देख के दिल में एक सवाल उठता है यार कि सारा, वो केदारनाथ में दिखने वाली जो कमाल की टैलेंट थी, आखिर वो गई कहां? मैं आज भी मानता हूं वो टैलेंट अभी भी कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, लेकिन टैलेंट अकेला काफी नहीं होता, परफॉर्मेंसेस चाहिए होती हैं, चॉइसेस चाहिए होती हैं, एक कमबैक चाहिए होता है जो सिर्फ स्क्रीन पे ना हो। और उस कमबैक की याद, वो पहली बार, वो केदारनाथ वाली सारा अली खान। ये है इस हफ्ते का रिवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक, जानेसार बाय अमित त्रिवेदी।
1: टॉप 20 रिवाइंड।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स हॉट सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 12

पति पत्नी और वो दोस्त है रूप दी रानी अपने दूसरे हफ्ते में है यूर नंबर 12 एक फिल्म चीटिंग के बारे में ग्लैमरसली हैप्पीली एंड कॉमिकली। हाय मैं हूँ सुरेंद्र सुंदरम और अभी जो आने वाला है नंबर 11 पे वो भी उसी दुनिया से है। है जवानी तो इश्क होना है, गाने का नाम है ब्याह करवा दो जी, ग्लॉसी कैची एंड इक्वली फॉरगेटेबल। और मैं जानता हूँ 2 महीने बाद ये गाना कोई नहीं सुनेगा। कैन आई बी ऑनेस्ट हियर, यार मैं थक गया हूँ। बीवी नंबर 1, नो एंट्री, दे दे प्यार दे, मर्डर, गहराइयां, कभी अलविदा ना कहना, और अब ये एक ही कहानी बार बार, अलग चेहरे अलग गाने, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला। और सच ये है कि हम और मैं भी इस हम में शामिल हूं, हम अपने ऑडियंस को बेवकूफ समझते हैं। हम सोचते हैं कि ऑडियंस कॉम्प्लेक्स स्टोरीज नहीं चाहती, उन्हें चाहिए सिर्फ चमक, उन्हें चाहिए सिर्फ शोर। वो लिसनर जो कानपुर में बैठा हुआ है, वो लिसनर जो दुबई में है, वो उतनी ही गहराई मांगता है जितनी कोई मांग सकता है, लेकिन हम उन्हें देते हैं क्योंकि हम में हिम्मत नहीं है कॉम्प्लेक्स लिखने की, कॉम्प्लेक्स दिखाने की, कॉम्प्लेक्स फील करने की। और जब कहानी में गहराई नहीं होती तो गाने में भी नहीं होती, इसलिए सैयारा जैसा गाना एक याद बन जाएगी मगर ब्याह करवा दो जी नहीं बन पाएगी। फर्क सिर्फ फिल्म मेकर्स की गट्सी चॉइसेस का होता है और अभी वो गट्स कहाँ हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरा काम है हर हफ्ते इस स्टूडियो में आपके लिए बेस्ट गाने ढूंढना उस शोर में से। और इस हफ्ते नंबर 11 पे है ये ब्याह करवा दो जी, तब है जवानी तो इश्क होना है।

0: Mirchi, it's hot. Suren ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: Number 10.

यार ये गाना चांद मेरा दिल जैसे ही चलता है मेरे दिमाग में एक और ही गाना ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। आई एम श्योर कि आपके दिमाग में भी वही गाना चल रहा होता है, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते और शायद कुछ करना भी नहीं चाहते। क्या

कहां। यू नो कोइंसिडेंस क्या है कि ऋषि कपूर साहब की वो फिल्म हम किसी से कम नहीं, वो गाना, वो फीलिंग, इट फील्स सो फ्रेश इवन नाउ। और यही तो बॉलीवुड का सबसे बड़ा सीक्रेट है जो कोई नहीं बोलता। हमारे सबसे बड़े फिल्म मेकर्स, हमारे सबसे बड़े सुपरस्टार्स, वो भी उसी फीलिंग के पीछे भाग रहे हैं, इंक्लूडिंग ए सन रणबीर कपूर, क्योंकि पापा की विरासत मिली जीन्स में, सरनेम में, लेकिन पहली बड़ी फिल्म के लिए उन्होंने सीधा पापा का गाना ले लिया।

0: से जुदा।
1: बचना है हसीनों, पूरी एक जनरेशन नाच रही थी और उन्हें खबर तक नहीं हुई कि ये तो उनके अंकल ऋषि कपूर का गाना है। एंड देन यू गॉट शाहरुख खान, जिन्होंने किया वही काम जो सिर्फ शाहरुख खान कर सकते हैं। उन्होंने ऋषि सर का एक और गाना लिया और उस पर एक पूरी दुनिया खड़ी कर दी।
2: चलता नहीं है दिल दे के यारो, इस दिल पे जोर कोई। चलता नहीं है दिल दे के यारो, इस दिल पे जोर कोई। इस रोग का नहीं है इलाज दुनिया में और कोई।

0: ओम शांति ओम। 2007 और ब्लॉकबस्टर, एक गाना जो लगभग 50 साल पहले लिखा गया था पर शाहरुख ने उसे इमॉर्टल बना दिया। ऋषि कपूर इजंट विद अस एनीमोर, मगर बॉलीवुड उन्हें कभी भूलने नहीं देगा एंड आई लव देम फॉर इट, इट विल कीप हिम अलाइव। लेकिन ये कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये यहाँ खत्म नहीं होती। नंबर 9 पर इस हफ्ते है सैयारा, जिसका दिल मोहित चौहान की उस आवाज में धड़कता है जो एक था टाइगर में सुनाई दिया था। पुरानी रू नया टेक, हमेशा से हमेशा तक। दिस इज सैयारा बाय फहीम अब्दुल्ला ऑन नंबर 9।
1: नंबर 9।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3
1: Mirchi. It's hot.
0: Surin ke saath only on Mirchi. It's hot.
2: Number 7.
3: Say whoa!

0: ये था वाओ नंबर 7 लाउड कलरफुल 2026 की ब्लॉकबस्टर एनर्जी एग्जैक्टली एज एडवर्टाइज्ड। बट लेट मी टेक यू बैक टू 2006, 20 साल पहले। वो साल याद है? धूम, क्रिश, डॉन, लगे रहो मुन्ना भाई, बड़ी बड़ी फिल्म्स, बड़ा नॉइज और उससे भी बड़ी ओपनिंग्स। लेकिन आज 2026 में अगर मैं आपसे पूछूं कि उस साल की सबसे एवरलास्टिंग एल्बम कौन सी थी, वो कोई बड़ी फिल्म नहीं थी। वो एक मिड बजट फिल्म थी जिसका नाम था गैंगस्टर। कंगना रनौत, अनुराग बासु डायरेक्ट कर रहे थे, शाइनी आहूजा थे लीड में। वो कहानी हम दोबारा नहीं खोलेंगे। एंड ऑफ कोर्स यू हैड द मोस्ट म्यूजिक हैवी एक्टर इमरान हाशमी। लेकिन प्रीतम दान ने उस फिल्म के लिए जो म्यूजिक बनाया वो फिल्म से बड़ा निकला, कास्ट से बड़ा निकला, कॉन्ट्रोवर्सी से बड़ा निकला। और इस हफ्ते नंबर 6 पे है मैं और तू फ्रॉम धुरंधर 2, एक और गाना जो शायद अपनी फिल्म से बड़ा बन सकता है, लेकिन ये वक्त ही बता पाएगा। लेकिन गैंगस्टर के एक गाने ने वक्त का इंतजार नहीं किया, वो ऑलरेडी क्लासिक बन चुका था जिस रात वो रिलीज हुआ। 2 बजे की नींद, किसी का नाम, भीगी आंखें, ये सिर्फ गाना नहीं है, ये एक फीलिंग है जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। ऑन अ वेरी स्पेशल रिक्वेस्ट, दिस इज जेम्स विद भीगी भीगी।
1: स्पेशल रिक्वेस्ट सॉन्ग।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। नंबर 5।

तेज हफ्ते मैन रियली गहरा हुआ अरिजीत सिंह का गाना जो हर बार नया लगता है। लेकिन कुछ दिन पहले आई थिंक रात के 3 बज रहे थे और मैं बस सोने ही जा रहा था एंड फिर एक वर्जन सुन लिया।

तेरा हुआ। इस बंदे का कोई नाम नहीं है, ये अपना चेहरा तक नहीं दिखाता। बस यूट्यूब पे एक चैनल है कॉल्ड मेलोडिक बैश, बस 3000 लोग जानते हैं इसे। दैट्स इट, दैट्स हिज सब्सक्राइबर काउंट। लेकिन वो अकूस्टिक गिटार जो इतना अग्रेसिव है, तार पे तार, जैसे कोई उस दर्द को अंदर रखने की आखिरी कोशिश कर रहा हो। द सॉन्ग इज इन सॉफ्ट, इट्स नॉट जेंटल, लेकिन इतना खूबसूरत है, इसलिए तो मैं इस गाने पे आके रुक गया। और वो आवाज, क्योंकि अरिजीत ने जिस तरह गाया है वहां पर भी दर्द है, लेकिन यहाँ अंदर से बिल्कुल एक अलग दर्द निकलता है। और यही तो म्यूजिक की सबसे बड़ी सच्चाई है, एक ही गाना हजार लोगों के हाथ से गुजर के हजार अलग कहानियां बन जाती हैं। मेलोडिक बैश की कहानी मुझे 3 बजे जागने पर मजबूर कर गई, लेकिन अभी के लिए इस फीलिंग के लिए एक और ऐसी आवाज जिससे मैं दूर नहीं हो पाता, नंबर 4 पे कोई और हो ही नहीं सकता, विशाल मिश्रा और उनकी दीवानियत। नंबर 4।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
1: मिर्ची इट्स हॉट.
0: Sureen ke saath only on Mirchi. It's hot.
2: Number 2.

0: आरी आरी अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा। अगेन नंबर टू दिस वीक। माय नेम इज सुरेन सुंदरम और ये है इस काउंटडाउन का आखिरी सेगमेंट। तो मैं सीधा मुद्दे की बात पर आता हूँ। बॉलीवुड में आज जो दिख रहा है वो सच नहीं है, वो रिव्यू खरीदा गया है, वो ट्रेंड प्लांट किया गया है, वो पब्लिक इज लविंग दिस फिल्म, एक बिल है भाई जो सब भर रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद करण जौहर कह रहे हैं।
1: Hollywood should stop doing PR. It would be much better and they should let their achievement speak for itself. Because unfortunately, all of PR is now paid PR. So if you want to say you're looking gorgeous, you just have to pay. If you want to say that you're the best actor on planet Earth, you have to pay. So I think we are on overdrive mode where it comes to PR. But now everything is available at a price, and that is something that could be deeply upsetting, because then you really can't gauge what's connecting and what's not. Because like now you're looking at everything and you're like, are people really liking it or have they been paid to like it? Like, I don't know. I can't tell half the time. Like, you know, many a time it's confusing me, and because even I'm sometimes paying for it, so I don't know.
0: I don't know. ये वही बंदा है जिन्होंने इस मशीन को बनाया और अब वो खुद नहीं जानते कि ये मशीन आखिर क्या कर रही है। जरा सोचिए, दैट इज द ट्रूथ। एंड देन और फिर एक और कहानी आती है। दिसंबर 5, 2025 धुरंधर, मार्च 19, 2026 धुरंधर 2। रणवीर सिंह कोई इंटरव्यू नहीं, आदित्य धर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। वॉज देयर पेड पीआर? एब्सोल्युटली जीरो। ऑर्गेनिक पीआर? अगेन एब्सोल्युटली जीरो। सिर्फ एक फिल्म, उसके दो हिस्से और उसकी आवाज। 5 महीने बाद धुरंधर इज बॉलीवुड्स हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म एवर। और इस काउंटडाउन पे जो गाना नंबर 1 है 12 हफ्तों के लिए, नो पेड पीआर, इट्स अ जेन्युइन बैंगर। करण ने कहा था, लेट योर वर्क स्पीक फॉर इटसेल्फ, एंड रणवीर एंड आदित्य धर डिड जस्ट दैट। They let their work scream for themselves. This is Shararat, Dhurandhar, 12th week on number 1.
2: Number 1.

0: सो ये था मिर्ची डॉट 20 का लेटेस्ट एपिसोड, 20 गाने एक जर्नी और आप जो इस सफर को मायने देते हैं। म्यूजिक वही जीतता है जो सच में लिखा गया हो, बाकी सब वक्त तय करता है। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट हियर ऑन द मिर्ची टॉप 20, सरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।
2: अरे यू के बड़ा गोरी भाई, बजा।

Mirchi, it's hot. 98.3 Mirchi, it's hot.

Mirchi. It's hot.

Mirchi. It's hot. Mirchi, it's hot.

आता है, ना रात को सोया जाता है। उलझा रहता हूँ यादों में, मुझको बड़ा रोना आता है। भूल गया मैं खाना पीना, जिंदगी को हंस के जीना, तेरे चक्कर में मेरा एक बोतल रोज का पीना।

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, बंदी का नाम है आरजे कनिका। इट्स टाइम फॉर द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10, ओनली शो ऑन मिर्ची, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना सजेस्ट करना है, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई एंट्री है, हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक है ऑल दिस एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की। गाना नंबर 10 पर इस गुरु रंधावा का गाना, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, उन्हीं की आवाज। गाने का नाम है वोग। पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे गिर के वोग इस हफ्ते ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद शुभ का नया नवेला गाना मूव्स इस हफ्ते डेब्यू मार के ऑन गाना नंबर 9। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
0: Number 10.

0: गुरु रंधा की आवाज में एक गाने का नाम है वोग, दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। मैं गुरु रंधावा का गाना सुनती हूँ, सुन के तो मुझे पता है इट्स अ गुरु सॉन्ग, पर अक्सर नाम नहीं याद रहता, बिकॉज मोस्टली गाने मुझे एक जैसे साउंड करते हैं। पर कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कहीं से उसका एक इंस्ट्रूमेंटल या इंट्रो म्यूजिक भी सुन लें तो पूरा गाना याद आ जाता है।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बिंदी का नाम है आरजे करेगा। इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, फॉलो करना एकदम फ्री है। मुझे पता है आप फोन ही चला रहे थे अपना, @RJKareka और इंस्टाग्राम पर आके क्विकली से हेलो। कोई गाना शेयर करना हो बिंदास आके हिट मी अप। कभी ऐसा होता है ना, दोस्तों के साथ बैठे हैं, रेडियो पे कोई गाना बस शुरू हुआ है, इंट्रो म्यूजिक प्ले हुआ है एंड आपने एकदम बता दिया कि अरे दिस इज दिस सॉन्ग, एकदम फुल ऐसे सुप्रीम फीलिंग आती है दैट आई एम बेटर देन यू ऑल, मैं ज्यादा कल्चरली रिच हूँ, मैं ज्यादा अच्छा म्यूजिक जानती हूँ तुमसे। बहुत सही फीलिंग होती है, शाबाश, पैट ऑन योर बैक। लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं कि जैसे ही वो इंट्रो म्यूजिक बजता है आपको नहीं, गाड़ी में चारों दोस्तों को गाना याद आ जाता है, बिकॉज वो गाना, वो इंट्रो म्यूजिक इतना आइकॉनिक होते हैं। पिछले हफ्ते हमने आपको एक गाने का इंट्रो म्यूजिक सुनाया था एंड आपको गेस करना था कौन से वाला गाना है। प्लेइंग इट राइट अगेन फॉर यू। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे राइट आंसर्स आएंगे, बिकॉज ये गाना एक साल पुराना भी नहीं है। गाने का नाम है अर्ज किया है बाय अनूप जैन, इट्स अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग। इस काउंटडाउन पे आगे ये गाना आने वाला है, कौन से नंबर पे उसके लिए वेट करना पड़ेगा। पर जितना पॉपुलर ये गाना हो चुका है उतना ही सिनोनिमस ये इंट्रो पीस हो गया है। @RJKareka इंस्टाग्राम पर आओ, अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ाओ, मैं एक और गाने का इंट्रो म्यूजिक आपके लिए प्ले करने वाली हूँ। ध्यान से सुनो और बताओ ये कौन सा गाना है। जल्दी जल्दी आके @RJKareka और इंस्टाग्राम पर मुझे बताओ, मेरे दिमाग में तो गाना, गाने के विजुअल्स, वीडियो सब आ गया है। शो में आगे चल के ये गाना मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अभी काउंटडाउन पर आगे बढ़ते हैं दिलजीत दोसांझ की आवाज में, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है डीलर। पिछले हफ्ते से 4 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके दिस वीक ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडिया टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
1: नंबर 8।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट
0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची

0: पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जम गया है ये गाना। गाने का नाम है ए अजनबी, आदित्य रिखारी की आवाज अलोंग विद कुटले खान एंड रैविटोर। इट्स अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग ए अजनबी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले संजू राठौड़ का नया नवेला गाना, गाने का नाम है बैंगल्स, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका। दिस इज गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का रिपोर्ट कार्ड हम आपके लिए लेकर आते हैं। इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। द शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक। लेकिन म्यूजिक की बात पता है क्या होती है, इट मेक्स यू ट्रैवल इन टाइम। कोई भी धुन कभी भी हमको जिंदगी के किसी किस्से में ले जाती है। लाइफ की मेमोरीज की जो बुक लिखी हुई है हमने, उसका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 कभी भी खुल जाता है। अभी रिसेंटली एक वीकेंड पे मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं कैफे में थी, थोड़ी कॉफी पी रही थी, आई वॉज एंजॉइंग द वाइब, सेल्फी खींच रही थी, आई वॉज ट्राइंग टू बी इन द मोमेंट, एंड एक गाना चलता है उस कैफे में। वो गाना सुनते ही मैं अपनी लाइफ की मेमोरीज के चैप्टर नंबर 2019 में जा पहुंची। वो गाना मेरे को बिल्कुल ट्रांसपोर्ट करके इसी स्टूडियो में लेकर आया जहां मैंने वो गाना आपके लिए सबसे पहले प्ले किया था।
2: वास्ते जा भी दूं, मैं गवाही मां भी दूं, किस्मतों का लिखा मोड़ दूं।
0: गाने का नाम है वास्ते, ध्वनि भानुशाली, निखिल डिसूजा का गाना। एंड ऑनेस्टली मुझे लगा भी नहीं था कि मुझे एंड टू एंड इस गाने के लिरिक्स याद रहेंगे, बट आई हैड आई कॉन्टैक्ट विद एक दो लोग जो मेरे राइट वाली टेबल, लेफ्ट वाली टेबल पे बैठे थे, एंड वो भी इस गाने के साथ लिप सिंक कर रहे थे। एंड आई रियलाइज दैट सम सॉन्ग्स हैव एन इम्पैक्ट जो आप डिफाइन ही नहीं कर सकते हो। आई रिमेम्बर 2019 में दिस वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट पॉप सॉन्ग्स ऑफ द ईयर। इनफैक्ट गाना इंडी टॉप 10 का बेस्ट ऑफ 2019 में वास्ते वॉज नंबर 1 सॉन्ग। इस गाने ने कई सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए। ये पहला ऐसा नॉन फिल्म गाना था जिसने यूट्यूब पे 1 बिलियन व्यूज क्रॉस किए। उसके बाद कई गानों के साथ ऐसा हुआ, बट आई हैव टू रिमाइंड यू दैट इस गाने ने वो इफेक्ट क्रिएट किया जो एक फिल्म का गाना करता है। जहां इट डजंट मैटर कि ये गाना कौन सी फिल्म पे है, किस पे दर्शाया है, अगर कभी आपने सुना तो मेरे जैसे उस कैफे में बैठे बैठे आप एक गाना गाना शुरू कर देते हैं। तो अपनी रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग, तनिष्क बागची की कॉम्पोजिशन, ध्वनि भानुशाली की आवाज, लेकिन इस गाने के स्टार हैं निखिल डिसूजा। ट्रस्ट मी, ये गाना मैंने यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम रील्स, हर जगह सुना है, पर कुछ तो बात है, ये गाना रेडियो पे कुछ ज्यादा ही खूबसूरत साउंड करता है। दिस इज वास्ते प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।

0: What a song! Tanishq Bagchi की composition है, ध्वनि भानुशाली है निखिल डिसूजा की आवाज, अराफत महमूद के लिरिक्स हैं राधिका राव एंड विनय सप्रू ने ये वीडियो बनाई. Everything about this song is iconic. For the real OG pop culture fans, मैं एक indie pop quiz पूछूंगी आपको. It's a difficult one. At RJ Kanega on Instagram पर आओ और मुझे बताओ इस गाने वास्ते में ध्वनि भानुशाली का ब्रेकअप होता है, ठीक है? वो ब्रेकअप कितने बजे होता है मुझे आके at RJ Kanega पर बताओ. मेरे को full confidence है आपको पता होगा. Now back to the countdown. अगले वाले गाने की बारी. The social media sensation गाने का नाम है Shisha. मिट्टर और की आवाज इनकी composition. मिट्टर और स्वरा वर्मा की आवाज में Shisha is playing right next for you on Gaana number 5. You're listening to Gaana Indie Top 10. बंदी का नाम है Kanega. Enjoy.
1: Number 5.

रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची रेडियो मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स हॉट

0: Diljit Dosanjh, the man you are, and what a collaboration with Sia, gaane ka naam hai Ranja. Pichle hafte se ek nahi, do nahi, teen nahi, char bhi nahi bro. Pure 6 positions super jump karke Ranja was this week on Gaana number 4.
1: Gaana Indie Top 10. Kanika ke saath. On Mirchi.
0: Mirchi sun rahe hain aap. This is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. And this show is all about the hottest pop music of the week. वो कहते हैं हर गाना अपना लिस्टनर ढूंढ लेता है, पर पता नहीं कुछ गाने हमको रात को ही ज्यादा अच्छे क्यों साउंड करते हैं. लाइक रियली थिंक अबाउट इट, देयर आर सम सॉन्ग्स जो आपने दिन में 2-3 बजे सुना तो ठीक है, यू विल गिव इट लाइक अ 6/10. वही गाना 2 AM पे हिट्स राइट इन द फील्ड्स, दिल के सारे इमोशंस उमड़ जाते हैं. और ऐसा ही एक गाना मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया है, उसका नाम है जुल्फे बाय साहिल. दो बड़ी टॉर्चेस के साथ इस गाने पर हम एक स्पॉटलाइट मारना चाहते हैं, बिकॉज ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल आर्टिस्ट. साहिल ने अपनी जर्नी बहुत सारे आर्टिस्ट की तरह कवर्स गाकर ही शुरू करी थी, मैशअप्स गाई, वहीं से अपनी ऑडियंस बिल्ड करना शुरू किया. एंड धीरे धीरे जब लोग उन्हें ट्रस्ट करने लगे, उनके म्यूजिक के साथ जुड़ना शुरू करे, उन्होंने अपना ओरिजिनल म्यूजिक अपने फैंस के साथ शेयर किया. एंड फैंस ने कस के प्यार दिया, बहुत ओपन रहे उन एक्सपेरिमेंट्स के लिए, एंड दे केप्ट आस्किंग फॉर मोर न्यू सॉन्ग्स. उन्हीं में से एक गाना है जुल्फे. इट्स अ प्रॉपर लेट नाइट कन्फेशनल सॉन्ग, ऐसा मोमेंट जब आप किसी को कॉल नहीं करते हैं लेकिन उनके बारे में सोचना बंद भी नहीं कर पाते हैं. रियलिटी इमेजिनेशन के बीच का जो स्पेस है, जिसको मे बी आप ओवर थिंकिंग कहते हैं, बट उसका भी अपना मजा है. इट्स क्वाइट R&B सॉन्ग, वेरी इंटीमेट, वल्नरेबल है, दैट्स साहिल की स्पेशलिटी. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. आज की हमारी गाना स्पॉटलाइट में दिस इज जुल्फे बाय साहिल, प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
2: खुश

0: साहिल की आवाज में दैट वॉज जुल्फे फॉर ऑल द लेट नाइट थिंकर्स. अगर आप थोड़ा ओवर थिंक करते हैं ये गाने को बैकग्राउंड में लगा कर करना एटलीस्ट बेटर रहेगा. एट आरजे कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम पर आके मेरे साथ अपने 2 AM वाली प्लेलिस्ट शेयर करो. आई माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. नाउ बैक टू द काउंटडाउन. अगले वाला गाना इज मेरा आपका सबका 2 AM 2 PM 3 PM 5 PM सॉन्ग. ये गाना 15 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार है अनूप जैन की आवाज में. गाने का नाम है अर्ज किया है. इट्स अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके अर्ज किया है इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 3.

0: गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सबको ये गाना बहुत पसंद है। 23 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप किया है करण औजला इक्की का बॉयफ्रेंड दिस वीक ऑन गाना नंबर 2।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: You are listening to Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This is the show which is all about the hottest pop music of the week. गाना नंबर 10 से गाना नंबर 2 का सफर हम पूरा कर चुके हैं। बिफोर वी मूव ऑन टू द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक, इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल
1: कसर क्लासिक।
0: हमारी कसर क्लासिक जहां पर हम 90s 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज एंड द सॉन्ग वी गोइंग टू फीचर दिस वीक इज गाने का नाम है तू बाय द वन एंड ओनली सोनू निगम। सोनू निगम का नाम ही काफी है, ही इज अ फुल रेंज म्यूजिशियन। जितने पॉपुलर सोनू निगम एज अ हिंदी प्लेबैक सिंगर हैं, उतने ही पॉपुलर वो एज अ पॉप स्टार भी हैं। नाउ थिंक अबाउट इट, इंडिया में पॉप स्टार्स कब बने? मतलब गाने बहुत बड़े हो जाते थे, पर उन गानों को हम वो गाना किस मूवी में आया है या उस गाने में कौन सा एक्टर एक्ट्रेस है उससे याद रखते थे। देन केम अ वेव ऑफ आर्टिस्ट अर्ली 90s लेट 90s में, ये पॉप स्टार्स जैसे कि सोनू निगम, शान, लकी अली, जिन्होंने इंडियन इंडी पॉप म्यूजिक को आगे बढ़ाया, जिनके गानों की म्यूजिक वीडियो में कोई बड़ी फिल्मों के हीरो नहीं बल्कि आर्टिस्ट खुद फीचर होते थे। एंड सोनू निगम वाज द पोस्टर बॉय ऑफ दैट चेंज। अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाना शुरू किया उन्होंने। ऑल्दो वो बहुत बड़ी फिल्मों के लिए ऑलरेडी प्लेबैक सिंगिंग कर रहे थे, बट उन्होंने इंडिपेंडेंट पॉप म्यूजिक को भी उतना ही स्पेस एंड अटेंशन दी। एंड उस फेज का ये सबसे मस्ती भरा गाना है। The song is young, very peppy, एक flirtatious energy है, and किसी movie का scene बनने की जरूरत नहीं थी, because in its own, इस गाने ने अपनी एक cinematic दुनिया बनाई। इस गाने में सोनू निगम के साथ बिपाशा बासु is the featuring actor. It was a youth favorite back then, it is till now, तो अपनी radio sets की volume बढ़ा दीजिए। सोनू निगम की आवाज में the forever iconic गाने का नाम है तू, it's playing right next for you on our cassette classic this week। बंदी का नाम है कनका, enjoy।

यार ये गाना सुनते हुए लगता है कि टोपी पहनूं और उस टोपी को उल्टा कर दूं. समथिंग अबाउट दिस सॉन्ग विच जस्ट सर्व्स स्वैग. सोनू निगम की आवाज में दैट वॉज टू ऑन आवर कैसेट क्लासिक दिस वीक. एल्बम का नाम है किस्मत, म्यूजिक है बिडू का एंड लिरिक्स हैं देव कोहली के. आई कांट बिलीव अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्वैग वर्ड यूज किया बिकॉज मुझे क्रिंज होता है उस वर्ड से. सो टू मेक माई सेल्फ फॉरगिव दैट एंड फॉर यू टू फॉरगिव मी, सीधा बढ़ते हैं इस हफ्ते के न्यूमेरो उनो गाने की टूवर्ड्स. पिछले हफ्ते से अपनी पोजिशन

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1,
2: हर हफ्ते मैं यहां आता हूं 20 गाने आप और ये काउंटडाउन। लेकिन आज एक बात कहनी है पहले। बॉलीवुड में बहुत शोर है, बहुत चमक, बहुत पीआर, बहुत नॉइज, और उस शोर में कुछ गाने होते हैं जो सच में फील किए गए हैं, लिखे गए हैं, जिए गए हैं। वो गाने अलग सुनाई देते हैं हमेशा। आज का शो उन गानों के बारे में है, उन लोगों के बारे में है जिन्होंने शॉर्टकट्स नहीं लिए, जिन्होंने शोर नहीं मचाया, बस काम किया और वो काम आप तक पहुंचा इस काउंटडाउन के जरिए, मेरे जरिए। हाय, आई एम सुरेन सुंदरम एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का सबसे डेफिनेटिव हिंदी म्यूजिक काउंटडाउन। और मैं आपको वो सब सुनाऊंगा जो डिजर्व करता है सुना जाना, नंबर 20 से नंबर 1 तक। तो शुरू करते हैं विद गाना नंबर 20, रणवीर सिंह, धुरंधर, इश्क जलाकर।
3: नंबर 20।

और फिर नंबर 19 पर एक डेब्यू सॉन्ग आदित्य रिखारी और साथ में है श्रेया घोषाल जो 2026 में बिल्कुल एक जेंजी सिंगर की तरह सुनाई दे रही हैं। दिस वन इज कॉल्ड दिल वाले चोर फ्रॉम पति पत्नी और वो दो। क्लियरली चीटिंग इज कूल। नंबर 19।

0: ये था क्या कमाल है नंबर 18 इस हफ्ते। एआर रहमान का म्यूजिक, इरशाद कामिल के अल्फाज और दिलजीत की आवाज। और इन गानों के बावजूद लोग कहते हैं नहीं यार, पुराने गाने ही अच्छे होते थे। मैं हूं सुरेन और आज मैं उस डिबेट को सीधा खत्म करना चाहता हूं। इरशाद कामिल, जिनसे ये बात मैंने खुद पूछी, उनका जवाब सुनिए।
1: Actually, I don't miss anything in today's song. क्योंकि हम पिछले पुराने गाने ना भाई साहब सिर्फ 200 सुन रहे हैं, आपको पता है, और पिछले 100 साल से हम फिल्में बना रहे हैं। आलमारा हमारी पहली पिक्चर थी जिसमें गाने थे, और अब तक हम पिक्चरें बना रहे हैं और रेडियो पे सिर्फ 200-250 गाने चलते हैं पुराने, वही बार बार जो हिट हो गए हैं, और उसके अलावा वो सब आप नहीं सुनते हैं जो आप तक पहुंचा ही नहीं है या आप अप्रोच नहीं कर रहे हैं। आज के जमाने में भी आप आज के टाइम को थोड़ा सा वक्त दीजिए, 10-15 साल दीजिए, आप फिर यही बात दोहराएंगे कि पीछे वाले जो गाने थे वो बहुत अच्छे होते थे, आज से 20 साल पहले जो गाने लिखे जा रहे थे। सो आई डोंट थिंक आई डोंट मिस एनीथिंग।
0: इरशाद भाई ने जो कहा वो सिर्फ सच नहीं है, वो अनकंफर्टेबल सच है। हम 250 गाने सुनते हैं लेकिन बाकी के 50,000 का क्या? वो दब गए, they were forgotten. इसलिए पुराना जमाना परफेक्ट लगता है क्योंकि उसके बेकार गाने इतिहास ने ऑलरेडी डिलीट कर दिए। आज का म्यूजिक वीक नहीं है, आज का म्यूजिक बहुत ज्यादा है, एंड उसमें से भी एक चन्ना मेरेया है, एक सैयारा है, और ये वाला गाना भी है, क्या कमाल है। ये गाने अगर 1975 में आते तो आज हम इन्हें क्लासिक सॉन्ग्स कहते। मेरे लिए आज का पिक ऑफ द वीक भी इरशाद कामिल का ही है। रहमान साहब का म्यूजिक, इरशाद भाई ने क्या कमाल लिखा है, एक गाना जो ऑलरेडी क्लासिक बन चुका है, संग बाय मोहित चौहान, दिस इज तुम हो फ्रॉम रॉकस्टार। पिक ऑफ द वीक।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: नंबर 70

0: जाइए सजना बाय जैस्मिन सैंडलर्स, मैन शी इज अनरेप्लिकेबल, वो सिर्फ वो है। लेकिन आज मैं आपके साथ एक अलग बात करना चाहता हूँ, म्यूजिक के बारे में, पर्सनल म्यूजिक के बारे में। जब भी आप कोई गाना सुनते हैं, एक मोमेंट आता है उस गाने में, एक छोटा सा मोमेंट जो सडनली आपका हो जाता है। देखो सबका अलग होता है और वही तो मैजिक है। जैसे दीवानियत को ही ले लो, दुनिया उस कोरस पर दीवानी है, वो मल्टी वॉइस बिल्ड, वो सब जानते हैं, सब गाते हैं, लेकिन मेरे लिए वो गाना शुरू होते ही खत्म हो जाता है, पहले पल में, पहली आवाज में।
1: जो

0: है
1: ये, यही विशाल की ये सॉफ्ट ऑलमोस्ट हेजिटेंट आवाज, जैसे किसी दर्द को संभाल के रखा हो, वहां नहीं जाता जहां सब जाते हैं, सीधा अंदर पहुंचता है। और तब मुझे समझा कि गानों में सबका दरवाजा अलग होता है। ठीक चन्ना मेरे यार, अब ये तो एक अलग ही चैप्टर है। अरिजीत सिंह का वो हुक, इट्स अ क्लासिक, इट्स इमॉर्टल, सब जानते हैं। लेकिन जब वो गाना खत्म होने लगता है, जब बाकी सब ऑलरेडी आगे बढ़ चुके होते हैं, मैं वहां रुक जाता हूँ।

ये रिपीट, ये बार बार कहना, जैसे कोई जाने से पहले एक बार और मुड़ के देख रहा हो। और फिर कुछ दिन पहले एक नया गाना आया और उसने वही किया जो विशाल की आवाज ने किया था, जो अरिजीत के उस आउट्रो ने किया था। एक स्पेसिफिक मोमेंट, एक स्पेसिफिक फीलिंग ऐसी जो मुझे लगा कि यार मैं तो यहां पहले भी आ चुका हूं, इस दर्द को मैं पहले भी महसूस कर चुका हूं।

ये वाला हिस्सा, बस ये वाला जो सडनली एक टाइम मशीन बन जाती है। और आज ये गाना पहली बार इस काउंटडाउन पे आ रहा है, नंबर 15 पे, फ्रॉम चांद मेरा दिल, दिस इज एतबार। सुनिए, पूरा सुनिए और ढूंढिए वो एक हिस्सा जो सिर्फ आपका होगा। नंबर 15।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स हॉट
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: नंबर 12
3: दे दिल पर देती मुंह तेन नित दारू।

0: धुरंधर रॉकिंग द काउंटडाउन दिस वीक ऑन नंबर 14 एंड रणवीर के साथ यू गॉट सारा अर्जुन, एक बहुत ही प्रॉमिसिंग नाम, लेकिन उससे भी ज्यादा एक प्रॉमिसिंग एक्टर। और इस नाम ने मुझे याद दिलाई एक और सारा की, सारा अली खान। 2018 केदारनाथ, सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक डेब्यू हुआ जिसे पूरी इंडस्ट्री ने नोटिस किया, मैंने भी उन्हें नोटिस किया, और उस फिल्म के बाद आई जेन्युइनली बिकेम अ फैन ऑफ सारा अली खान। लेकिन 2026 में पिक्चर क्या है? देयर्स अनन्या पांडे सोलो फिल्म्स, बड़े बैनर्स, देयर्स जानवी कपूर सोलो फिल्म्स, बड़े बैनर्स, एंड देन देयर इज सारा अली खान, पति पत्नी और वो दो में शी इज वन ऑफ द टू अफेयर्स। तीन लड़कियां, एक ही दरवाजा, तीन अलग अलग मंजिलें। और इस हफ्ते नंबर 13 पे एक गाना है कॉल्ड आवारा अंगारा फ्रॉम तेरे इश्क में, कृति सैनन का ये गाना है, जो इस जेनरेशन की सबसे कमिटेड एक्ट्रेसेस में से एक है। ये सब देख के दिल में एक सवाल उठता है यार कि सारा, वो केदारनाथ में दिखने वाली जो कमाल की टैलेंट थी, आखिर वो गई कहां? मैं आज भी मानता हूं वो टैलेंट अभी भी कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, लेकिन टैलेंट अकेला काफी नहीं होता, परफॉर्मेंसेस चाहिए होती हैं, चॉइसेस चाहिए होती हैं, एक कमबैक चाहिए होता है जो सिर्फ स्क्रीन पे ना। और उस कमबैक की याद, वो पहली बार, वो केदारनाथ वाली सारा अली खान। ये है इस हफ्ते का रिवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक, जानिसार बाय अमित त्रिवेदी।
1: टॉप 20 रिवाइंड।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स हॉट के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 12

पति पत्नी और वो दोस्त है रूप दी रानी अपने दूसरे हफ्ते में है यूर ऑन नंबर 12 एक फिल्म चीटिंग के बारे में ग्लैमरसली हैप्पीली एंड कॉमिकली। हाय मैं हूँ सुरेंद्र सुंदरम और अभी जो आने वाला है नंबर 11 पे वो भी उसी दुनिया से है जवानी तो इश्क होना है। गाने का नाम है ब्याह करवा दो जी, ग्लॉसी कैची एंड इक्वली फॉरगेटेबल। और मैं जानता हूँ 2 महीने बाद ये गाना कोई नहीं सुनेगा। कैन आई बी ऑनेस्ट हियर, यार मैं थक गया हूँ। बीवी नंबर 1, नो एंट्री, दे दे प्यार दे, मर्डर, गहराइयां, कभी अलविदा ना कहना, और अब ये एक ही कहानी बार बार, अलग चेहरे अलग गाने लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला। और सच ये है कि हम और मैं भी इस हम में शामिल हूं, हम अपने ऑडियंस को बेवकूफ समझते हैं। हम सोचते हैं कि ऑडियंस कॉम्प्लेक्स स्टोरीज नहीं चाहती, उन्हें चाहिए सिर्फ चमक, उन्हें चाहिए सिर्फ शोर। वो लिसनर जो कानपुर में बैठा हुआ है, वो लिसनर जो दुबई में है, वो उतनी ही गहराई मांगता है जितनी कोई मांग सकता है, लेकिन हम उन्हें देते हैं क्योंकि हम में हिम्मत नहीं है कॉम्प्लेक्स लिखने की, कॉम्प्लेक्स दिखाने की, कॉम्प्लेक्स फील करने की। और जब कहानी में गहराई नहीं होती तो गाने में भी नहीं होती, इसलिए सैयारा जैसा गाना एक याद बन जाएगी मगर व्याह करवा दो जी नहीं बन पाएगी। फर्क सिर्फ फिल्ममेकर्स की गट्सी चॉइसेस का होता है और अभी वो गट्स कहाँ हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरा काम है हर हफ्ते इस स्टूडियो में आपके लिए बेस्ट गाने ढूंढना उस शोर में से। और इस हफ्ते नंबर 11 पे है ये व्याह करवा दो जी, तब है जवानी तो इश्क होना है।

0: Mirchi, it's hot. Suren ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: Number 10.

यार ये गाना चांद मेरा दिल जैसे ही चलता है मेरे दिमाग में एक और ही गाना ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। आई एम श्योर कि आपके दिमाग में भी वही गाना चल रहा होता है, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते और शायद कुछ करना भी नहीं चाहते। क्या

कहां। यू नो कोइंसिडेंस क्या है कि ऋषि कपूर साहब की वो फिल्म हम किसी से कम नहीं, वो गाना, वो फीलिंग, इट फील्स सो फ्रेश इवन नाउ। और यही तो बॉलीवुड का सबसे बड़ा सीक्रेट है जो कोई नहीं बोलता। हमारे सबसे बड़े फिल्म मेकर्स, हमारे सबसे बड़े सुपरस्टार्स, वो भी उसी फीलिंग के पीछे भाग रहे हैं, इंक्लूडिंग ए सन रणबीर कपूर, क्योंकि पापा की विरासत मिली जीन्स में, सरनेम में। लेकिन पहली बड़ी फिल्म के लिए उन्होंने सीधा पापा का गाना ले लिया।

बचना है हसीनों, पूरी एक जेनरेशन नाच रही थी और उन्हें खबर तक नहीं हुई कि ये तो उनके अंकल ऋषि कपूर का गाना है। एंड देन यू गॉट शाहरुख खान, जिन्होंने किया वही काम जो सिर्फ